0: छुआ मेरी उड़ा छन क्या ना बताल के पूरे है
1: आया अब लुए हो रहेगा पूरे
2: जो वा वन पुर पे जारे उड़ा छन जो वा वन पुर पे जारे उड़ा छन लिवो नारे दा दा जा पियन लोंग का ये कारण यो यो टीमिंग ऑफ

0: यार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: Yo, this is your boy African Sun, Ruben El Propone.

0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो पियम चुनके रे वेर क्वारो
0: पियम चुनके रे वेर क्वारो
1: बिमारा मैं पाचू
0: बिमारा मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बी डोटा
1: इटीविनो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो पियोम चुन के रे वेर क्वारो बिमार मैं पाचो
2: इवान लंग यू बिरोटा
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो और रेडियो
0: और रेडियो रेडियो रेडियो
1: इटीविनो और रेडियो और